0: extreme energy drink.
1: रंग बहार रंग बहार
2: वर्ज संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: वर्ज पेंसे घर रंगाउनु होस् लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
2: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि घर रंगाउ खुशी बनाउ उपहार जित्ने अवसर पाउ
1: वर्ज पेंसे
3: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

0: को वित्तीय सस्ता।
1: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड, वित्तीय सेवा को और को परिभाषा।
2: रेडियो धादिंग समय संकेत।
3: अहिले साँझको 7 बज्यो।
4: शिवम सिमेन्ट क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज भन्दै शिर ठाडो पारिरहेका छौ सदा सर्वदा।